0: होए आपे आप निरंजन सोए।
1: जिनसे ब्याह तिन पाया मान, नानक गाविये गुणी निधान।
0: गाविये सुनिए मैं रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए।
1: गुरमुख नारंग गुरमुख वेदंग, गुरमुख रहा समाई।
0: गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई।
1: जे हो जाना अखा नाही, कहना कथन ना जाई।
0: गुरा एक दे बजाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई।
1: तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाए करी।
0: जेती सिरठ पाई, बेखा बिन कर्मा के मिले लई।
1: मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी।
0: गुरा एक दे बजाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई।
1: जे जुग चारे आर जा, होर सुनी होए।
0: नवा खंडा बिच जानिए, नाल चले सब कोए।
1: चंगा नाउ रखाई कै, जस कीरत जगले।
0: जे तिस नदर न आवे, ता बात न पुछे के।
1: कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस तरे।
0: नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे।
1: देहा कोए न सुजई, जे तिस गुण कोए करे।
0: सुने सिद पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश।
1: सुने दीप लो पाताल, सुने पोहे न सके काल।
0: नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
1: सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुने मुख सलाहन मंद।
0: सुने जोग जोगत तन भेद, सुने सासत सिमरत वेद।
1: नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
0: सुने सत संतोख ज्ञान, सुने अठ सठ का स्नान।
1: सुने पढ़ पढ़ पावह मान, सुने लागे सहज ध्यान।
0: नानक भगतां सदा

0: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
1: जिव तुस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान
0: ओहो वेखे उन्ना नदना आवे बहुता एहो बेदान
1: आदेश सत्य से आदेश आद अनिल अनाद अन...

0: प्रीति प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व
0: सर्व ज्ञान नमो परम तारंग नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्रंग
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरपंगी
0: जीवं नमो बीज बीजे खिजे भजे समस्तंग प्रसजे
1: निर्पालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट शांत वै प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता
0: सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले
1: कृपाल शांत वै प्रसाद
0: रूप नादम जोन पुरख अपार
1: सर्व मान तर मान देव पेवा
0: सर्व काल सर्व कोपन काल
1: जगत तर विराजहि अब

0: सर्वंगंता सर्वंग्याता सर्वंग्याता
1: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणंग
0: सर्वंगकर्मंग सर्वंगधर्मंग सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता
1: सावल शांतवापरसा
0: नमो नरकनाशिसदावं प्रकाश्यनंगं स्वरूपे पंगपूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वादे
0: नंगे नामित्र पंगिदर कामनर पंगी स्वरूपे सर्वंगी।

सर्वर मैं हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए, रहाउ राख राख चरण

कि मत कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी के गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को दा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब दृढ़ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सदी अनिमृता, ब्रह्म ज्ञानी मुगुज जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण ब्रह्म विधारता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सुभ्यु प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सकलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बने नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उद्धार जो अंतर नाम श्रम मैं पिखे भगवान निमक निम ठाकुर नमस्कार नानको वा पर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या ना इस न परस मन मैं प्रीत नंजन दर्श पर त्रया रूप न पेखन नेत्र सा किटा।

कोट में देखो ऐसा परसो वैष्णव सो सुपरसो प्रसन्न विष्णु की माया ते भिन्न कर्म करतो वै ने कर्म वैष्णव का निर्मल धर्म काउ फल के शानी बादशाह केवल भगत कीर्तन संग राजा मंत्रनंद समण गोपाल सुप्रोभ कृपाल आप दृढ़ नाम पावे नानको वैष्णव परमुख पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल जागा दुटक संघ मंत्र मनसा सकला परम कर पूजा सकल पा ब्रह्म सा संघ पापा मलुख होवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की डा करण नेत मंत नर पैप सन प्रेत हार के चरण दे बिसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध राम नाम आत्म में सोद राम नाम सास पीवे सो पंडित कै उदय जग जीवे हर की कथर दिव्य सावै सोपण फिर जोने आवै वेद प्राण समृद्ध बूजा मूल सुख मन जाना सो चौंपणा को देव उपदेश नानक उस पंडक दा देश बीज मंत्र सुर को ज्ञान चौंपण मैं जपा को नाम जो जो जपै सकत होए सासंग पावे जिन को एक कृपा अंतर उधारै पास प्रेत मुद पात्र को ताव रो का नाम का रूप मंगलन गान कौन लोग तेना पाया धर्म नाम तिस मिलया लिखा तुर कर्म जिसका मन पा ब्रह्म का निवास उसका नाम सत राम दास आत्म राम नदरिया दाल संतन पाए तन पाया सदा निक निकटा जान सो दादर कै प्रवान अपने दास को आप कृपा करै ते दास सो जी प्रै सगल संग आत्मे उदास वैसे जूत नानक राम दास प्रभ की अगात्मी दावे दीन मुख सो को आवे दसार तैसा सो सानंत नय व्योग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा रजान जो व्रताय साय जुगत

ध्यान कबू तरत स्नान कबह सिद्ध सदम ज्ञान कबू केट हस्त पतंग हुए जिया अनक जोन परमै परमिया नाना रूप संग दिखावे जुम्प भावे तवन चावे जोस भावे सोई होए नानक तुर जावन कोए कबह साध संग त्यो पावे सस्थान ते बौन आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश सस्थान कन्ने बिनास मंत नामृते करंग सदा बसै पा ब्रह्म कै संग जौन जल मैं जलिया खटाना त्यों ज्योति संजोस मन अमड़के गुम पाए विश्राम

एक उपरज जन की आशा तिसके कटियम की फासा पाप की सुमन भूख नासन लागे दुख जिसको अपरमय त्यावै सो संशेला ने लावै प्रापना कृपा कराय सो सेवको किसी डराय।

नानक होसे पे सच अस्पदे चरण सस प्रसनार पूजा सस सेवदा दर्शन सत पेकनार नाम सत सत अवनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत साजा सुनता बुजन अर्घ सस होए नाम सत सत सोए सस रूप माने कनकराम तन मुल पछाने जा कर दैव स्वा प्रभया तत् ग्यान समान प्रगटाया पैत निरपोए मसाना देते अवतमान समाना वर्तमान ने बत कटाए तक नकण जाए पूजा पूजन हर विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आगा कारी ठाकर का सेवदा पुजारी

का टूटा गंड है। गुर पूरा तत एह बुझाया, प्रभ अपना नाम जंत्या, साल संत करो काम, त्या जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो।

बृहस्पति जबा कारखना दिता पाप अंतव कहते उतार जब धारी अपन सुन समाध तब है ब्रोक संक मात जब का ब्रह्म जिन जापत तब हरख सो कुक सह व्याप्त जब अपन पाप ब्रह्म तब मोकांग सोत ब्रह्म आपन खेल आप प्रतीजा दान करने न दूजा जब होवत प्रकेवल तनी तब बंद मुक्त कौशक गनी जब कर मा पारे तब नरक सुरुक गुण तार जब निर्गुण प्रसाद सुबाए तब सत्कोग दिठाए

गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल मुद्र दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सम समन बारंबार नानक जी कह दातम स्लो साल के बचन मलिक लाल रतन सुनकमा दूत उदारिया तुरा लोकन ता सब जीवन सबलता का संग ज कमल लागा रंग जय जय शबदना दवाजा सुन सुन अंध कृपो गाजा प्रगटि गोपाल महात के माथे नानक उदरे तिन कै साथे संजो सुसरणी आए का कृपा पिया मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सात संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक की सेव आल जाल विकार तेरा तेरा ना सुना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक निवे के पमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान कागर जीत सुखमनी सहद गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहत निधान सर्व शैता की पूर्ण होए प्रधान पुरख पुरख सब लोए सावते उपाया स्थान बन हो गया हतंघट लैन सोए न प्राप्त होए खेम सांत्रित नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतै सिद्ध विद्या तप योग प्रभु ध्यान ज्ञान सिरतम स्नान चाप पदार्थ कमल प्रकाश सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर का बेता समद सिख दिष्टेता ए फल तस जन कै मुख भने।

छुटै जा कै मस्त कर्म ब्रव पाए साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत। जन्म मरण ता का दुख।

साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल शांत सहज सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो, सब किछ बहुत बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब द्रापे जियो, सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई, जन्म मरण पै काटे मोहा, विंसे रसोग संतापे जियो, सास सास नानक साला है, सिमरत सिमरत नाम काटे सब फाहे, पूरन आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो, मांझ मल्ला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावें गुण अगम अपारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सोति आई है जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल बिक जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब से को दिए जियो, नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब औ बिनसे हर हर ते आई है, जिन से व्या सो पार ग्रामी, कार्य सगले थिए जियो, आए पिया तेरी शरण आई, ज्यो पावे त्यों लह मिलाई, कर कृपा प्रभ भक्ति लावो, सच नानक अमृत पिए जियो, मांझ मल्ला पंजवा भये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ बरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारे जियो, अपने जी जंत ब्रत पारे, ज्यों बारक माता समारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो, जल थल पूर रहया मेहमाना, जल थल पूर रहया मेहरबाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिनस ते सदा ते आई, जे किन में सगल उधारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोख संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, मांझ मल्ला पंजवा जिथे नाम जपिया प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए समाले, हर अंतर बाहर नगर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसू की वाड़ी जियो, संता से थी रंग न लाए, साकत संग विक्रम कमाए, दुर्लभ देख होई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो,

आज मरला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाणे कल कलेश सब दूर पे आने शांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत न टूटे मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम कई फासी जियो अमृत वरके अनहद बाणी मंतन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ इस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवण जान रहे बड़भागी नानक पूरन आसा जियो मांझ मल्ला पंजवा नहीं पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी।

उठे सहज समाध लगी लिव अंतर सो रस जोई जाने जियो। अगम अगोचर साहेब मेरा घट घट अंतर वर्त नेरा सदा अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाणे जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी मन एको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम कह पाणे जियो। हथी दिति प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो। मांझ मल्ला पंजमा कीनी दया गोपाल गोसाई गुर के चरण बसे मन माही अंगीकार किया तिन करते दुख का डेरा टाहिया जियो। मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा सान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहिया जियो। जो किच करे सो आपे बुद्ध सियाणप किचु न जापे अपने संतानो आप सहाई प्रभ परम पुलावा लाहिया जियो। चरण कमल जन का आधारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहिया जियो। मांझ मल्ला पंजवा सो सच मंदिर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सात अर्थ सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम विठो कुर्बानो जियो। सच वडाई की न पाई कुदरत कर्म न लहना जाई सच वडाई की न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याय त्याय जीवें जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो। सच सालाहन वडभागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद पावे सच नाम ही साणो जियो। सच्चे अंत न जाने कोई थान थनंतर सच्चा सोई नानक सच त्याईया सद ही अंतर जामी जाणो जियो। मान महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जब अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूरत सिमरत पलवंजै जीवन सफल तथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पौ भरम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौ निज नाम भरे भंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला दे दान नानक जन मांगे सदा सदा हर त्याई जियो। मांझ मल्ला पंजवा ऐथे तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर न कोई करते मैं धर ओढ़ तुम्हारी जियो। रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म नव जुए हारी जियो। नाम अवकद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल यह है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास वारिया कटकट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक से बिन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। मांझ मल्ला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारे सरबस दीजे अपना वारे आठ पहर गोविंद गुण गाइए बिसन कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा साधु संग त्रीजे सागर कटिया जमकी फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो। पूरन भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जियो। मांझ मल्ला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भक्ति प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया बिनसे आलस रोगा जियो। जाके गृह नव निध हर पाई तिस मिलिया जिस पुरब कमाई ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर प्रभ सपना गलना जोगा जियो। खिन में थाप थापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन रटे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाव आप जपाई गुरबोहित पाया कृपा ते नानक तुर सुन जोगा जियो। मांझ मल्ला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा भली जाए सोई सियाणा सोपतवंता हुक्म लगै जिस मीठा जियो। सब परोई एकत धागै जिस लाए लए सो चरणी लागै ऊंद कवल जिस होए प्रगासा तिन सर्व

को निश्चल अगम अपारा गुरमती बूझ बजावणिया हों वारी ज्यों वारी राम नाम मन बसावणिया तिस रूप न रेख्या वर न कोई गुरमती आप बुझावणिया रहाओ सब एका जोत जाने जो कोई सतगुर सेविया प्रगट होई गुप्त प्रगट वर्तै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्म पत गवाए अपनी वृथा जन्म गवावणिया गुर का शब्द को बिरला बूझे आप मारे ता त्रिपवन सूझे फिर ओह मरे न मरना हो गए सहजे सत समावणिया माया में फिर चेतन लाए गुर के शब्द सद सद रह समाए सच सलाए सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सब पावणिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो जन निर्मल सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया मांग मला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल ज्योत सब माए समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी ज्यों वारी सुखदाता मन बसावणिया हर निर्मल कुछ शब्द सलाही शब्दो सुन तिसा मिटावणिया रहो निर्मल नाम वसिया मन आए मंत्र निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुरते पाया निचो आप मुआ तथ्य मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन बसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल हो गए हुमे मैल गुर शब्दे तो वे निर्मल वाजे अनद तन बाणी दर सच्चा सो बा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल हो गए निर्मल मनुआ हर शब्द परो गए निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावणिया जो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोह है सच नाम मल कदे ना लागे मुख उज्जल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैल थाए मैला खाए फिर मैल बधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सबाए से निर्मल जो हर साचे पाए नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज मला तीजा गोविंद उज्जल उज्जल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उज्जल सदा मुख सो है अत उज्जल नाम त्यावणिया हों वारी ज्यों वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुनावणिया रहो गोविंद गावे सहज सुभाए गुर के भय उज्जल हम मैं मर जाए सदा आनंद रह भगत करें दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर के शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्द नित करावणिया ऊंचा कुके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरमुख भगत जा आप कराए मन तन तन मन राता सहज सुभाए बाणी वजह शब्द वजाए गुरमुख भगत थाए पावणिया बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर के शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत न पाए कोई नानक नाम गुर भक्ति पाई है गुर चरणी जित लावणिया मान मला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कभी नाही सुखदाता सेवन सुख पायन गुरमती मन वसावणिया हों वारी ज्यों वारी सुख सहज समाध लगावणिया जो हर सेवे सिलसिला सोहें सोभा सुत सुहावणिया रहो सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरा मन पाए सच बाणी तुदा सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूकै फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावै तू आपे नाओ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया एक सच्यों लिव लागी सद ही हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरा चाहे नौ नित नाम वसिया मन आए पूरे भाग सत गुर पाया